0: Book a celebrity cruise and get return flights to Europe from £199 per person. We build the European holidays you'll always remember in the places you'll never forget. Our new Celebrity XL erases the line between ship and shore and brings the culture and flavours of Europe right along for the ride. With 9 ships sailing to 132 destinations in 24 countries, your happy places visit more of Europe than ever. Join us and see why nothing comes close to Celebrity Cruises. Sunrise listeners can also enjoy 5% savings on eligible sailings. For more information and your discount code, go to sunriseradio.com. Terms and conditions apply.
1: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
1: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
1: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में 2 ब्रांचेस के साथ,
3: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल, सबसे सोना सड़ा सोना।
2: वसीम ज्वेलर्स।

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, पाते हैं कड़ी मेरी लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: ने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई। My mom started cooking with khanam ki in the 70s. Dal makhni, butter chicken, these have been my family's favorite dishes. Using khanam ghee for 3 generations, the aroma, that creamy melt in your mouth, satisfying taste. Ah, now my kids insist I use this superfood for their eggs and lamb chops.
1: Mom, is the dinner ready? As I can smell the khanam ghee.
0: Khanam Ghee, the legacy lives on.
2: Khanam Ghee, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets.
0: 10 days to Turkey, guaranteed departure on 18th September. Book early to avoid disappointment. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
2: Web surfing the way it's supposed to be. Use www.4550.com. Spell it out. No more typing address. 4550.com. Spell it out. Your new homepage. Surf the web better. 4550.com. Spell it out. This is the beginning.
3: दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार खेलो और जीतो प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में। खेल को जीतने के लिए मैं आपसे पूछने वाला हूँ पहला सवाल, जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गोल्ड बेचने की सबसे सही जगह कौन सी है?
0: Can I use my phone a friend, a cool Raj?
3: जी बिल्कुल।
0: Hi Raj, listen, is it Bronze Bank, Silver Bank, Gold Bank or Platinum Bank?
4: It's definitely Gold Bank.
0: I'd like to go with Raj's answer, please. Gold Bank.
3: बिल्कुल सही जवाब। आप लोग भी इनकी तरह समझदार बनिए और गोल्ड खरीदने या बेचने के लिए गोल्ड बैंक ही जाएं।
2: विजिट द गोल्ड बैंक 215 द ब्रॉडवे साउथ ओ 0203 500 1111 goldbank.co.uk। This is Sunrise, the UK's biggest. Asian. Mix.

उदित नारायण, अमित कुमार, आलका याग्निक एंड मखना फ्रॉम द फिल्म बड़े मियां छोटे मियां, वेल डन इफ यू गॉट इट, अमृत इन क्रोइडन यू गॉट इट टू, बट योर आंसर केम इन आफ्टर आईड ऑलरेडी अनाउंस्ड इट, बट इट डजंट मैटर, यू स्टिल गेट अ बिग शाउट आउट, इट्स ओके.

मुजमनाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को।